गुण गावो नित राम के, ए अवखद जोग आए बसो कर देश में, ए भले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न भय लह गए बेयोग। बिलावल महला पंजवा, काहू संग न चल ही माया जंजाल, ऊठ सिधारे छत्रपातो संतन कै ख्याल, रहाओ अहम बुद्ध कौ बिनसना ए तुरकी ढाल, बहजोनी जन्म मरै बिखिया बिकराल, सत बचन साधु कह नित जपै गोपाल, सिमर सिमर नानक तरे हर के रंग लाल। बिलावल महला पंजवा, सह समाधानंद सुख पूरे गुरदीन, सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन, रहाओ जय जय कार जगत्र मैं लोचै सब जिया, सो प्रसन्न पए सतगुर प्रभु कछ बिघ्न न थिया, जां का अंग दयाल प्रभ ताके सब दास, सदा सदा वड़ियाइया नानक गुरपास। राग बिलावल महला पंजवा, घर पंजवा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मृत मंडल जग साजिया ज्यो बालू घर बार, बिनसत बार ना लाग गई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मनै माहे सत देख बिचार, से सतक गिरि जोगी तज गए कर बार, रहाओ जैसा सुपना रैन का तैसा संसार, दृष्ट मान सब बिनसी है क्या लगे गवार, कहां सो भाई मीत है देख नैन पसार, एक चाल सह सब अपनी वार, जिन पूरा सतगुर सेव्या से असर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राख पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा, लोकन किया वड्याइया बैसंतर पागो, जो मिले प्यारा अपना ते बोल करा गो, जो प्रभ जियो दयाल होए तो भक्ति लागो, लपट रहो मन बासना।

पंजवा अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया जिस जन होवा सा संग तिस पेटे हरदाया एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया अनक बाता सब कर रहे गुर घर ले आया रहाओ शरण परे की राखता नाही सहसाया कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुर्बाया अंतर्जामी आप प्रभु सब करे कराया पतत पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया मत भूलो मानुख जन माया परमाया नानक तिस पत राखसी जो प्रभ पहराया बिलावल महला पंजवा माटी ते जन साजिया कर दुर्लभ देह अनक छिद्र मन मैं टके निर्मल दृष्टे क्यों बिसरै प्रभ मनैते जिसके गुण ए है प्रभ तज रचे जे आन स्यों सोर लिया खे रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे हे छोड़ परपंच प्रभ स्यों रचो तज कूड़े ने जिन अनक एक

नीच खन में थापै कीमत कहीं ना जाई है ठाकर परतापै पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना पाया संग चलिया कमाया कारण कारण समर्थ प्रभु तेरी सरनाई हर दिन सरैण नानक जपै साध साध बल जाई बिलावल महला पंजवा जल ढोवो एह सीस कर पग पख लावो बार जाओ लख बेरिया दर्श पेख जीवावो करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ ते पावो देव सुहनी साध कै बीजन टोलावो रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पीलावो ओवा रस में सांत तृप्त होए बिखै जलन बुझावो जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो ऊठत बैठत जपो नाम एहो कर्म कमावो नानक की प्रभ बेनती हर शरण समावो बिलावल महला पंजवा एहो सागर सोई तरै जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसै वड पागी पाए सुन सुन जीवै दास तुम बाणी जन आखी प्रगट पई सब लो मैं सेव की राखी रहाओ अग्न सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया गुर पय सहाई जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया काटी सिलक प्रमोह की अपने प्रभ पाया मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ कै हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ बिलावल महला पंजवा बंधन काटे आ प्रभ होवा कृपाल दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकी नदर निहाल गुरपूरै कृपा करी काटिया दुख रोग मन तन सीतन सुखी पाया प्रभ त्यावन जोग रहाओ औखद हर का नाम है जित रोग ना व्यापै साध संग मन तन हितै फिर दुख ना जापै हर हर जापिए अंतर लिवलाई किलवख उतरै सुध होए साधु सरनाई सुनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बलाई महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई बिलावल महला पंजवा पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए सांत नाम जपत गोविंद का बिनसै परम प्रांत गुरपुरा जिस

भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड की है जान ली है मानी। सत बचन नानक कहे प्रगट सब माहे प्रभ के सेवक सरण प्रभ तिन को पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा बंधन काट सो प्रभु जा कह कल हाथ अवर कर्म नहीं छूटी है राखो हरनाथ। तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखे गोपाल राव। आसा परम विकार मोह इनमें लोभाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना। परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी तुम्हारे ज्यो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपारे। करण कारण समर्थ प्रभ देह अपना नाओ नानक तरिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल महला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत महामोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा खरका पैखर तव छुट्टे जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड सिबरै नाही जोन दुख निर्लजे पांड। हर संग सहाई महामीत तेस्यों तेरा भेद बीदा पंच बटवारई उपजो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना तन तन सर्बसे अपना प्रभ जन कौ दीना। बिलावल महला पंजवा उद्यम करत आनंद भया सिमरत सुखसार जप जप नाम गोबिंद का पूर्ण विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा पार ब्रह्म आराज ते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच। तन सो थान बसंत तन जह जपिए नाम कथा कीर्तन हर अत घना सुख सहज विश्राम। मन ते कदे न विसरै अनाथ को नाथ नानक प्रभ शरणागति जा कै सब किश हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़िया फुर सुख मैं पाया सदा सिमर चरणार बिंद शीतल होताया। जीवित या अथवा मोया किश काम न आवै जिन एहो रचन रचाया को ते स्यो रंग लावै रहाओ। अरे प्राणी उसन सीत करता करै काम ते काढ़ै कीरी ते अस्ति करै टूटा ले गंढै। अंडज जेरज सेतज उत्पजा प्रभ की यह किरत किरत कमावन सर्व फल रविय हर निरत। हम ते कशु ना होवना शरण प्रभ साध मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काढ़। बिलावल महला पंजवा खोजत खोजत मैं फेरा खोजो बनथान अशाल्या पे अशाल्या शेदा भेद प्रभ ऐसे भगवान। कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागन ते सुपना पला बसिए प्रभ संग रहाओ। वर्ण आश्रम शास्त्र सुनाओ दर्शन की प्यास रूप ना रेखना पंच तत् ठाकर अबनास। ओहो स्वरूप संतन कह विरले जोगी सर कर कृपा जाको मिले तन तन ते ईसर। सो अंतर सो बाहरे बिरसे तह परमा नानक तिस प्रपेटिया जाके पूर्ण कर्मा। बिलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न पए देख प्रभ प्रताप कर जो तारिया सतगुरु कर हर आप। खात खर्चत निभत रहे गुरशब्द अखूट पूर्ण पई समग्री कबहू नहीं टूट रहाओ। साध संग आराधना हर निद्या पार धर्म अर्थ हर काम मोख देते नहीं बार।
ਭਗਤਿਆ ਰਾਧਾ ਏਕ ਰੰਗ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਸੰਚਿਆ, ਜਾਂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਸੁਮਾਰ। ਸਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਈ ਐ ਬੇਅੰਤ ਗੁਸਾਈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਾਰਜ ਪਏ ਰਾਸ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਸ ਰਹਾਓ।

चरण कमल मंतन बसे प्रवयग में अपार। बस्त कमावत सब सुखी किश उन्ना दिसै, संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै। जय जयकार सबै करै सच थान सोहाया, जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा हर हर हर यारा दिया होई है आरोग, रामचंद की लष्ट का जिन मारिया रोग। रहाओ गुरपुरा हर जापिया नित कीचै भोग, साध संगत कह वारण मिलया संयोग। जिस सिमरत सुख पाई है बिन सह बेहोग, नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवा दो पदे कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आवरियो पाप सब त्यागया, दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग। शीतल मन पया गुरपुरा आरा दया, सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी कर्मया। रहाओ बहा पकड़ प्रभ काढ़िया, की ना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया। बिलावल महला पंजवा कर धर मस्तक थापया, नाम दीनो दान सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान। आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित वै साध जान सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरणार बिंद, जन प्रभ के प्राण सह सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा, दीनो प्रभ आप प्रभ शरणांगत जन परे ताका सत प्रताप। राखन हारिया पार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज रामदास पुर कीने गुरुदेव। रहाओ सदा सदा हर त्याई है किश बिघन ना लागै, नानक नाम सलाही है पै दुश्मन भागै। बिलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधी है, मिल साध समागै उचरद गुण गोपाल जस दूर ते जम भागै। राम नाम जो जन जपै आंदन सज जागै, तंत मंत न जो है तित ताख न लागै। रहाओ काम क्रोध मदमान मोह बिन से अनरागै, आनंद मगन रस राम रंग नानक शरणागै। बिलावल महला पंजवा जी जूत वस प्रभु कै, जो कह सो करना पय प्रसन्न गोपाल राय पौ किश नहीं करना। दुख ना लागै कदे तुद पार ब्रह्म चितारे, जम कंकर निर ना आवई गुरसिख प्यारे। रहाओ करण कारण समर्थ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ अपना, नाठा दुख ठाओ विश्राम पाए मिल साध संग ताते बहु न ताओ। बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ, अंध सुख मंगल बने पेखत गुण गाओ। रहाओ कथा कीर्तन राग नाद तुन एहो बन्यो सुभाओ, नानक प्रभ सो प्रसन्न पए बाहित फल पाओ। बिलावल महला पंजवा दास तेरे की बेनती, हृद कर प्रगास तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखर को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग घट सास। रहाओ मात पिता बंदप तू है तू सर्व निवास, नानक प्रभ शरणागति जा को निर्मल जास। बिलावल महला पंजवा सर्व सिद्ध हर गाइय सब भला मनावै, साध साध मुखते कह सुनदास मिलावै। सूख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन, जी सगल दयाल पए हर हर नाम चीन। रहाओ
ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਿਆਨੰਦ ਮੈਂ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਧੀਰ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਰਾਖ ਲਿਆ ਆਪਣਾ।

मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव। ऊच अपार गणत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बिलावल महला पंजवां।

गावत प्रभ नाम सहज सुख्या आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल पय राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा कावड़ परताप। बिलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण पय काम पौ नाठा प्रभ मिट गया रव्या नित राम। साज जना कै संग वस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट भय संसार मैं फिरते पहनाम, नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ उपजया सुख सात, वट प्रताप अचरज रूप हर की नीदात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे ना हो वई जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणकास। बिलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवया अंदन रंगराता। सांत सहज आनंद घना पूर्ण पई आस, सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम अंतर जामी, थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार। दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया, जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई। बिलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखिया नो, पार ब्रह्म गुरुदेव सुख सात सहज आनंद पय पूर्ण पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जी वालिया नो जा का वड प्रताप। दोखा मारे बख्शियां नु अपनी कल तारी, मन बाइंत फल दित्या नु नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवा चौपदे दुपदे कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोहन श्रवण यह ना सुनाए, साकत गीत नाद तुन गावत बोलत बोलिया जाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवाओ सदा करो करताए, अपैदान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख पंजन। मोहे चरण हृदय वसाए, सब हूं तले तले सब ऊपर एह दृष्ट दृष्टाए। अभिमान खोए खोए खोए खोई हों, मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल अतुल नह तुलिया भगत वच्छल कृपाए, जो जो शरण पर्यो गुर नानक अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवा प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाओ बार है रहाओ। उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितार है, सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम है मेरा परिवार है। जो तुम करहो सोई पल हमरे, पेख नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगले उदाहरण, मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मने विसारन रहाओ। संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मनते डारन, काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बेदारन। इनते काढ़ लेहो मेरे स्वामी हार परे तुम सारन, नानक की बेनंती प्रप है साध संक रंक तारन। बिलावल महला पंजवा संतन कै सुनियत प्रभ की बात,
कथा कीर्तन आनंद मंगल तोन पूर रही दिन से रात रहाओ। कर कृपा अपने प्रभु कीने नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात। तृप्त अघाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवा। राख लिए अपने जने आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिरस गए सब शोक संताप। रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुखदाते गुर कै बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम पै बिनसे कहो नानक ठाकर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। ताप लाहया गुर सिरजनहार सतगुरे अपने कौ बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार। रहाओ कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगह परवान। राग बिलावल महला पंजवा। चौपदे दोपदे कर सतवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा। रहाओ बिस्मन बिस्म पए जौ पेखियो कहन न जाए वड्याई। मगन पए ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा। ऊचन ऊंचा बीचना खींचा हौ तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पासारा एक है प्रिया पारा। एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा। अंत ना अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर काम ना आवत है जां स्यो राच माज तुम लागे ओ मोनी मोहावत है। रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिन मैं जावत है। उर्ज रहयो इंद्री रस प्रेरयो बिखै ठगौरी खावत है। तृण को मंदर साज सवारयो पावक तलै जरावत है। ऐसे गढ़ में ऐठा ठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है। दृष्ट न आवै अंध अज्ञानी सोए रहयो मदमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी पंखी जोफा हावत है। कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम या पारिया मोली प्राण प्यारो मन आधारो चीत चितवो जैसे पांत बोली। रहाओ सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। प्रेम मुख लागो जाओ वट पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली। कहो नानक प्रेरवि सुहागन आत्मी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा। गोबिंद गोबिंद गोबिंद मई जब ते पेटे साथ दयारा तब ते दुर्मत दूर पही। रहाओ पूर्ण पूर्ण रहो संपूर्ण शीतल सां दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते हो मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोझ पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साकै एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा। बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किश कथन न जाई। जह जह देखा तै रया समाई। रहाओ जय महा भयान दुख जम सुनिए
तह मेरे प्रभ तू है सहाई, शरण परयो हर चरण गए प्रभ, गुरु नानक बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवां, आगम रूप अविनाशी करता, पतित पवित एक निमख जपाई है। बिलावल महला पंजवां, क्या हम जी जंत बेचारे, वर्ण न साके एक रोमाई, ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा।